0: समीचो 14 के में बोधे लोटी पर दी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
2: आई समीचो लोटी पर दियो छामताई गुदी
1: भर दी आ भर दी बा लोटरी खाली पर दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आलन फोन खाले पनि आफै विवरण खाई मई आपिन खबै बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आफै बने आरी
3: सतर्कता न ठगी देख्या बसेन
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
5: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट हामी सबैको साझा आवाज

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: बैंजी खैमत बिली चौधरी एटीएम मोबाइल डे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आरी खाई बिले तो माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क ताना ठज रेख्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
2: निकट मा दिदी बहिनी निकट मा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज